रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क जवान रंग अमन।
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो अमन 88.4 करक। छोड़ दिया दिल को यूं
1: बहना। सिफात जैतून हर्बल आयल कतासु विख्तगुर जीगी यादा मैदी तकलीफी और या ब्लड सर्कुलेशन मो ठीक नेवी जोड़ो दर्दुना यादा पटो दर्दुनेवी या पवदन कम जाए के मोह दर्दवी और दादीना इलावा तासो द बवशीरो डेर ऑपरेशन ने कड़ीवी और ठीक शेवी नवी तदी टोलो मसलो हल द पारा सिफात जैतून हर्बल आयल इस्तेमाल कर दावतासुता करक बनू लकी मरवत शिमाली वजीरिस्तान जनूबी वजीरिस्तान टांग और डेहान के हर कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर के आसानी सरा मिलावेगी। नोस लाडशे निजदे कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर ना सिफात जैतून हर्बल आयल तला सक रहे मजीद मालूमात पारा सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहांगीर साहब सरा पदे नंबर रबिता कवले शे 0301-80-84-300।
2: दिल की बात प्यार के साथ तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ रेडियो अमन 88.4 करो।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
4: कारोबार हो या फरमाइश, मसाइल का हल हो या सेहत का राज, बैक टू बैक हो या खबरें, रेडियो अमन लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात। सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
5: खबर को द लोबुद मैदान वी या द पार्लियमान, मसल को इलाकाई भी या कामी, खबर को स्तासु भी या स्तासु द चापेरियाल, रसूबा स्तासु गत द वागदार नतर बादारा। नो तरला सकोली शे तासु मौजुआती इल्मी और सेंसी मालूमात पा अखबारी नड़े की द अखपल कुर्बा अहमदजार सरा सिर्फ और सिर्फ पा अमन रेडियो नेटवर्क। अमन रेडियो नेटवर्क, जुआन रंग अमन।

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज़।

तन है खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

मैं दीदी की गोर गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 साल नहीं सुनी है। आई मिस योर वॉइस। ओके सलाम टू यू एंड छोटे है ना माम हटक माँ उम्मीद है ना हान दिया हटक रिया हटक आमना हटक आम अन्नु पुटान अमरा हटक बाकी सबको सलाम मीडियम पर अब्रू। ओके अब्रू थैंक यू सो वेरी मच जहान मन ना।

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतेहाब रेडियो अमन 88.4 करक।
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात
2: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
2: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीमयाफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जीवन रंग अमन।

0: 5
1: साल है
0: मेरे साथ।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है,
0: खैर मुबारक। आपको पता है अभी दोबारा मेरे पेपर होने वाले हैं, तो मेरे लिए आप सब दुआ करें।
1: दुआ करते हैं और आप इसी तरह अपनी मेहनत जो है, कोशिश जो है वो जारी रखें। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को अपनी कोशिश और मेहनत का सिला मिलता है, इंशाल्लाह जरूर मिलता है। और आपको एक दफा फिर से बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन जी, थैंक यू सो वेरी मच। चाहता है दुआ सलाम
0: मुबारक और दुआ सलाम। तो अभी जो आपने हलवा वाला वो रेसिपी जो किसने बताई ना भाई ने, वो बहुत जबरदस्त है, इतना सिंपल तरीके से बताया। मैंने सोचा मैं सीखूंगी, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया, लेकिन वो नहीं,
1: लेकिन आपने सीखा नहीं?
0: नहीं, उसमें कंफ्यूज होगी, जिस चीज में खुद कंफ्यूज होती हूँ ना कि वो जो सूजी नहीं होती वो कितना डालते है, और उसके बाद उसके लिए घी कितना डालते है, उसके वो नहीं सही से बताया। अगर कोई बता सकते है मेरे बात तो थोड़ा सा बता दें।
1: अच्छा ओके, वो तो क्वांटिटी के हिसाब से होता है ना, जितनी सूजी होगी तो जितना हलवा आपने तैयार करना है वो चीज़ तो उस क्वांटिटी के हिसाब से होती।
0: कैसे?
1: मसलन अगर आपने आधा किलो सूजी का हलवा तैयार करना है, कि सूजी मतलब आधा किलो हो इतना हलवा तैयार करना है, तो उस हिसाब से आपने घी भी डालना है, चीनी भी डालनी है, ये चीजें डालनी है। अगर आपने किलो का तैयार करना है, हिसाब लगाया जाता है सूजी से, ठीक है?
0: हाँ।
1: तो वो उस हिसाब से तैयार होगा, ठीक है?
0: बस ये मुझे इसी चीज में
1: नहीं, अगर आपने आधा किलो मतलब थोड़ा हलवा बनाना है, आपने कहना है कि मैंने थोड़ा सा बनाना है, यानी एक पाव का बनाना है, अभी एक हाँ? पाव में, एक पाव में आप आधा किलो चीनी तो नहीं डाल सकते, तो दो चम्मच ही डालोगी ना, तो इसके बाद आपने आधा किलो बनाना है, सूजी लेनी है आधी किलो, तो उसमें उस हिसाब से आपने बाकी चीजें करनी है, ठीक है?
0: चलो बस
1: यही है, थैंक यू। ओके ओके ओके जी, वेलकम जहान मन्ना काल का वाले, थैंक यू सो वेरी मच। खुदा से मंडू मंडू रामोंदा बिल्कुल लास्ट मिनट है रुसरा पोती शर्फ प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम के मिल रहे तो सीधा का साथ मिलकर मिसी जून ची ने आगा हाथों से रोगली दी, मिसी जून बुखारी दर्शा में लाओ ची चाचा मिसी जून कड़ी दी और जश डेर मिसी जून ये कड़ी दी शाह बिल्कुल जी यो जहान मानना और विशरा विशरा जी मिसी जून सरा सरा खाना نور کال چی دیگه تو سخر روان دی و بیک تو بیک سی بلا پسیر روان دی خدا زر زر مثل جون تشمیل آوان

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

0: खुशखबरी खुशखबरी, हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब ममालिक, यूरोपी ममालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश खुश्की सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुस्न व जमाल बालों पर है।
0: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बनू लकी, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवा थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल चिसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सरबा ने मालश की नो ददा पसरबो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तेल वेश्तान गुर्जवल बंदवी वेख्तान गण औ उजद कवी देसर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवी जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

हाँ के जी योक्षलाय वंदे आवाज़ दर बंदे बोरवा और मिडल रहा ची द आवाज़ वेतो से डर जो ता ख्वाशीर से चले शुर ता वो शी चे सब याई ब्यार दस दर अरसा वो प्रोग्राम तरफ ता चेर तमासो यार जो शहीद खान सराउ से

मजे का। टैक्स स्पिन और शेजी जरूरी इस्तेमाल के खुदा वक्ती भी परमानेंट होने और बलदा छे द्रे किस्मा शैम्पू खा छे की मादो जोन पे लंबा वेस्ट है एक खाना दा से माँ कही का जोनी ना सरी ना विंजेस तय पे लंबे जे तय पे खुद जिफा कंपनी शिफा शैम्पू द्रे किस्मा शैम्पू दर का वक्षल ये शैम्पू दी बेहतरी ना खुशबू दर ना से दिसार वेस्टो नो मो बैदूर भी वेस्ट बदानो मुसाफा भी आओ जनाब आहा जो पचा तेरे रे तब ये जगह स्प्रे लगाओ जे वजीफा कंपनी द्रेकेस मा शैम्पू द वरीजे शैम्पू द प्यूजे शैम्पू कालवुंजी शैम्पू।

ठीक ठाक तो सही जुड़ी है यहाँ में आगा वो देखा तो यूं देखो तो पहला के डरे कर रहा टेंशन सॉंग बिल्कुल ठीक ठाक सो खबर है क्या किम जिनाम साउदा साउदा जिधर आजमाता खुद अफजोचेरे बोतला लाए हुए जी जिगारों में

0: हाँ जी बिल्कुल देसरा फेसबुक तारे मुसरा नोर सोक्रो वाली दी चे खान खान रो वाली चे सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अख्तर लला संगाई खै बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये चे सनम अफगानियम दलोई अफगानिस्तान ना और स्टडी मशी प्रोग्राम के हर कले तो हैं और यो जहान मनना हाँ जी बिल्कुल लाले और चिकुम ना बिहारो वाला दा ये चे लला ये चे मोबाइल के मैं चरची कुंडा खत्म शो वाला करना बिल्कुल चरची कुंडा तो खत्म की थी क्या ना खा मखा वो मजबूरी थी क्या ना और यो जान मना ना प्रोग्राम की मुसर्रत तलो मुसर्रा शिरकत का वालो और डेरा मना ना को हो बिल्कुल मिने वालो काल दिलारे मिने वाल चिकुंडी बिल्कुल इंतजार में नहीं पता मामा नहीं क्या ना और बिल्कुल तो से काल चिकुंडी अब हम प्रोग्राम के इस राय सर शरीक को और बिल्कुल तो से बढ़ेर को है पल मोबाइल के से पर 927-291-292 यस सलाम अलैकुम यस सलाम अलैकुम
1: वालेकुम सलाम अख्तर अल्लाह से वर्मा सर तो फिर खता खबरें गांव के मरकज कुलुना
0: ओ जी सूख तिरु सरा
1: तोफेल
0: खटक स्थला माशे तोफेला चेत वर्कशॉप है
1: यो
0: सज्जेद खटक था यो तनवीर था चलो सही शुआ डेरा मनना और सजेद योदर सरा सजेद डबल सूखता दे सरा तनवीर तनवीर तो हम प्रोग्राम के यार कलाए हुए हैं जड़े दुनू के रेडियो अमन फैमिली के और चिदय दमरा मुश प्रोग्राम और मुस्तरा मीना कई और प्रोग्राम के यार कलाए तो हैं तो से सफर महेश को नष्ट न नो चलो चलो ठीक सो सही दसन इस तुझे कुमदा बिल्कुल आखो मुझ दासे दा करना जी जड़े दुनू के मुस्तरा प्रोत प्रोत भी सही बिल्कुल यकीनी सरा चे सही दसनी स्तोस कलाम चे वो संप दगे जमाने के तो और वे कना और नुता वे चे सही दसनी स्तोस दे अगी वक्त खबरे अगी वक्त शायरी चे कुमा दो कना अगा दगी वक्त मने हम शवे दो
1: बिल्कुल बिल्कुल मुझे बदला दे लगा अस्तर वाले तो प्रोग्राम में मोहम्मद लाल मेरे जाला बगदारों को
0: अमीन अमीन अमीन अमीन सही है बिल्कुल अगु कलाम अगु के डेर जवरे जवरे की सेवे तो फेल खाना सही डेरा मने ना तो फेल खाना और चाहता दुआ सलाम भी
1: बस तुम्हारा मुचूर भी करना तू तो वो दुआ सलाम दी और दारा चिप खतक का स्पेशल सलाम दे बस जगह हम तुम्हारे घर आ
0: जी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम तो फेल खाना यो जहान मनना हाँ जी बिल्कुल नीचे लला लला नवी नवी दी मलगरी दी कना सजिद खान दे नहीं तो लादो दी और बिल्कुल तो से प्रोग्राम के हर कले हुए स्टडी माशे और मुझ कोशिश दावी जो मुझ दे खुले ना दासी अल्फाजुन ओजी दासी गप शपो लगो और जो मुझ से रख पला ढाल जी कुमो दा आगाज यो तो शी के ना और नो दासी वो तो से हम कवे तो से ना हम दा अपील कहू के ना और चिकल हम पो माशरे के वे चेत वे दासी खुशी खुशी खबर है शाह अखलाक सरा खबर है और चे तो सरा ढाल ची कुमो दा आगाज जी तेजी और न के ची मुझ न सुख नफरत कही के ना और मुझ वो कोशिश कहू और ची मुझ तो से तदा से शप प्रोग्राम न कहू और तो से मुझ सरा मीना कवे और मुझ मीना वाला सरा मीना कहू दे मुझ मीनावाल दे मुझा चिकुमी खबरें कहू कुम और मैलस कहू मुझ सरा मीनावाल चिरूशी और डेर पुई खला की मुझ दे अगू नजदा को आगा दे मुझ नजदा की और यो दे कूर माहौल चिकुम दा आगा जोड़ शी नो जमदून शा खुशे सरा तेरे जी कनी विच सोक निमिश पे तेरे ही ना नो खुदा खुदे तो से मीना दो मीना वालो मुझ सरा मु मीना दो मुझे तो से सरा मीना दो जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: वालेकुम सलाम स्टडी माशो बखेरुनो
1: स्टडी माशे खैर बराबर ये
0: खैर खरिया तमरो अमान दा सेकती और दी कुम जुना چکراز مکنا ستڑی ماشیر تیل نشی سڑای دا سکای وڑوک وڑکای تل چکراز مکنار غلائی
1: خدا سو شمن کا و شمن کا گرد چه پری نوزو
0: آئی آئی پا نظیر نشی
1: نظر نخو نظیر خو لگی خاما خواری
0: لگی که نا وڑی که وڑکو منده خو دیر لگی
1: نن خو اکتر لاواز لالا پلپون دیر ستڑای کرا
0: ستڑای کرا
1: سیگنل کمزیریه وی
0: تو گوتا می جیدو پویش موزون سر لوار چی کم در وڑا دا کنا پویش وی
1: لوار دا یستای
0: بلکل آقا خو ازندان لوار چی کم چا ترک تا بمو حال تا که خکوال نا وڑا می بناو چی وی چی للا لوار دی سچ وال تندکا
1: مجھے
0: خوش ہوڑی کی اوڑ کی ہو نا سندور سبیر سبیر خان چیتا لوڑا لے مجھے کہ وڑی کیوڑ کے تا چٹا پی ونو والا پوش ہوئی آوز کٹ کیجی کے نا آواز رسی
1: ہلو
0: تو آواز درومی مو آواز درسی بالکل آواز درسی تو والا مو والا درسی سبیر خان ویچی جدائی راغ لارے دویش فے مرگ میں قبول دے جدائی نہ قبل اوما آواز درسی کے نا سرنگ چل رہے سب شریک رو سرا ٹپا رہتا پتہ رنم سر آئی
1: لالا فاڈر میجمانی
0: وے ترنم سر
1: ہے